0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: Que ce soit avec un rosé d'ici pour pique-niquer, un cidre du Québec pour le 5 à 7 ou un petit mousseux pour célébrer le plus vieux, des prêts à boire au vin d'ici, cet été, on met du bleu dans notre verre avec les produits Origine Québec. SAQ, le goût de partager. 18 ans ou plus.
3: Sangeet, Sangeet.
4: Sangeet, Rudi Khurak hai.
3: Atma di awaz hai.
4: Kudrat da vardaan hai.
3: Aur प्यार दी जुबान है
4: जिंदगी जिंदगी
3: जिंदगी प्यार है
4: जिंदगी सांझ है खिमा है
3: जिंदगी एक रंगमंच भी है
4: इस रंगमंच पे हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
5: कल्चर ऑफ पंजाब
4: कल्चर ऑफ पंजाब
6: अच्छा अगर हम एवरेज 70 साल तक जीते हैं तो आपको पता है कि अपनी लाइफ की डिवीजन कैसे होती है करीबन 25 साल तो हम सोकर गुजार देते हैं 8 साल पढ़ाई करने में 6 साल आराम करने में या यूं कहें कि बीमारी में 7 साल टीवी देखते हुए या हॉलिडे पर 4 साल खाने में 5 साल सड़कों पर घर से काम काम से फिर वापस घर तो बचे कितने करीबन 12 साल सिर्फ 12 साल यही टाइम यही साल है जिसमें खूब सारी मेहनत करनी है हमें और अगर ये टाइम भी हाथ से गवा दिया हमने देन डोंट यू थिंक वी हैव लॉस्ट नियरली एवरीथिंग वेल सोच कर देखें इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जिसे शेयर किया मैंने यानी प्रीत ने आपके साथ आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जब आप और हम कॉलेज पास आउट करते हैं ना, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जॉब ढूंढने का। कई बार हमें एक बहुत बढ़िया जॉब मिल भी जाती है, बट स्टिल एक क्वेश्चन मार्क, सैलरी इतनी कम क्यों? पर ना, एक बात हमेशा याद रखें कि एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू अर्न। जो आपने अपने करियर की शुरुआत में सीखना है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप अर्न कितना कर रहे हैं उस टाइम। तो जी, इसलिए एक्सपीरियंस गेन करें, काम को दिल लगा कर सीखें, तो सैलरी ने तो खुद ब खुद पीछे आ जाना है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ
4: जब तक आप ये यकीन नहीं करते कि जौन सा काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टिप है। अच्छा, ऐसा करें, दिल को अपने काम में बसा लें और काम को अपने दिल में, फिर देखें रिजल्ट कितना कमाल का होता है। मेरे को पता है कि आपने ऐसे तो मानना नहीं है, चलो ट्राई कर लें, हर्ज भी कोई नहीं है।

0: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: कुछ दिन पहले मैंने पेपर में हमारी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और मैगसे अवार्ड विनर किरण बेदी का एक आर्टिकल पढ़ा जो खास कर पेरेंट्स के लिए था एंड वेरी स्पेशली फॉर द पेरेंट्स ऑफ डॉटर्स, बेटियों के माँ बाप के लिए। उसमें एक बहुत टचिंग सी बात लिखी हुई थी कि जब भी किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो आंखें खोलते ही अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से सबसे एक ही सवाल पूछती है, एम आई वेलकम इन द फैमिली, क्या मैं आपका गुरूर हूँ या आप पर बोझ हूँ। और ये पेरेंट्स ही हैं जो उसे सहारा दे, उसकी ताकत बन सकते हैं आगे बढ़ने में अच्छी एजुकेशन देकर। किरण बेदी कहती हैं कि वो एक छोटे से शहर अमृतसर से हैं जहाँ जरूरत है उनके अपने पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स की, हजारों लाखों की संख्या में, जो खास कर अपनी बेटियों की एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें और उन्हें समझा पाएं कि किताबें सोने चांदी की ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कीमती है, जो उन्हें ऐसी जिंदगी दें कि फिर कोई बेटी ये दोबारा न कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए।

आज के शो कल्चर ऑफ पंजाब में हमने अपने आसपास के हर पहलू, हर फील्ड को टच करने की कोशिश की, लेकिन एक कोशिश नहीं, वादा करना है हमें अपने आप के साथ कि हम किसी न किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर विल ट्राई एंड मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस। एक नहीं, हजारों ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें जरूरत है आपके जैसे लोगों की, जिनके पास जरिया है सोसाइटी में चेंज लाने का।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: अपने आप को जब तलाशना शुरू करते हैं तो खुद को ढूंढते ढूंढते कई बार हम पहुंच जाते हैं आईने के पास। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। अब तो ले देकर वही शख्स बचा है मुझको मुझसे जुदा करके जो छिपा है मुझ में। आईना ये तो बताता है कि कौन हूँ मैं, पर इस बात पे खामोश है कि क्या खास है मुझ में।

जिंदगी थमने का नहीं, लड़ने का बढ़ने का नाम है, और किसी के आने या जाने से ये कभी रुकती नहीं। जिंदगी ने कहा मुस्कुराते हुए, मिल तो

जाओ कभी आते जाते हुए, वो भी शायद पशेमा था मेरी तरह, मुड़ के देखा तो था शायद उसने जाते हुए। आदमी की बहुत सी है मजबूरियां, ये कहा था उसने जाते हुए। अपने वादे पे जिनको बहुत नाज था, उनको देखा है हमने बहाने बनाते हुए। हम रुके थोड़ा, हम भी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए।

0: ऑफ पंजाब दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब।

इससे पहले कि कुछ समझ आए, वक्त गुजर जाता है, जिंदगी बीत जाती है और हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि पता ही नहीं चला। जीवन एक धारा सा कब बह निकला पता ही नहीं चला। क्या लिखूं मैं इन पन्नों पर जिन पर स्याही नहीं टिकती। मेरे कलम ने कब छोड़ा लिखना। दिन गुजरे रातें ढलती रही, मेरी सुबहों ने मेरी शामों से कब नाता तोड़ा पता ही नहीं चला। निराश नहीं जिंदगी से मैं भी, हाँ हैरान जरूर हूँ। कौन था मेरे साथ, किसने था मुझको मोड़ा पता ही नहीं चला।